ना हो वही कार भेख पवै सब कोई गुर की पौड़ी जाए चढ़े कर्म प्राप्त होई अंतर आए बसै गुर शब्द विचारे कोई नानक शब्द मरे मन मानिया साचे साची सोए माया मोह दुख सागर है बिख दुत्र तरिया ना जाए मेरा मेरा कर दे पचमोए हो मैं करत विहाय।

अति ज्ञान रतन मन वसै सब देख्या ब्रह्म सुभाए। नानक सतगुर बोहि थै बड़ भागी चढ़ै ते पौ जल पार लंघाए। बिन सतगुर दाता को नहीं जो हर नाम दे आधार। गुर कृपा ते नाउ मन वसै सदा रहै उर तार। तिसना बुझै तिप्त होए हर कै नाए प्यार। नानक गुरमुख पाइय हरे अपनी कृपा तार। बिन शब्द है जगत बर लिया कहना कछु ना जाए। हर रखे से उबरे शब्द रहे लिवलाए। नानक करता सब किश जानदा जेन रखी बणत बनाए। होम जग सब तीर्था पढ़ पंडित थके पुराण। बिखमाया मोह न मिटे विच हो मैं आवण जान। सतगुर मिले मल उतरी हर जपया पुरख सो जान। जिना हर हर प्रभ सेवया जन नानक सद कुरबान। माया मोह बहु चित वदे बहु आसा लोभ बिकार। मन मुखे अस्त्र नाथिया मर बिनस जाए खिनवार। वड भाग होवै सतगुर मिले होमै तजै विकार। हर नामा जप सुख पाया जन नानक शब्द विचार। बिन सतगुर भगत ना होवी नाम न लगै प्यार। जन नानक नाम अरा दया गुर कै हेत प्यार।

रहे दोख सुख एक समान तिना नदरी को आया सबे आत्म राम पहचान मन मुख बालक बिरध समान है जिना अंतर हर सुरत नाही बिच होमे कर्म कमाव दे सब धर्म राय कह जाही गुरमुख हछे निर्मले गुर कै शब्द सुभाए ओना मैल पतंग ना लगे जे चलन सतगुर पाए मनमुख झूठ ना उतरै

एक ओंकार सतगुर प्रसाद राग माला, राग एक संग पंच बरंगन संग अल्लाह पह आठौ नंदन प्रथम राग पहरो वै कर ही पंच रागनी संग उचर ही प्रथम भैरवी बिलावली पुनिया की गावह बंगली पुनवस लेखी की पई बारी ए पहरव की पांचों नारी पंचम हरख दिसाक सुनावह बंगालम मद माधव गावह ललत बिलाव लगाव ही अपनी अपनी पांत अष्ट पुत्र भैरव के गावह गायन पात्र द्वितीया माल कौ सक आला पहै संगरागनी पांचौ था पहै गुण करी अर देव गंधारी गंधारी सिहुती उचारी तनासरी ए पांचौ गाई माल राग कौशक संग लाई मारू मस्तंग मेवारा प्रबल चंड कौशक उबहरा खौ खटे पहुरा नंद गाय अष्ट माल कौशक संग लाए पुन आयो हिंडोल पंच नार संग अष्ट सोत उठह तान कलोल गायन तार मिलावही तेलंगी देव करी आई बसंती संदूर सोहाई सरस अहीरी लै पार जा संग लाई पांचौ आर जा सुरमानंद पास कर आए चंद्र बिंब मंगलन सुहाए सरस बान आहे बिनोदा गावे सरस बसंत कमोदा अष्ट पुत्र मैं कहे सवारी पुन आई दीपक की बारी कशली पट मंजरी टोडी कही अलाप का मोदी अव गुजरी संग दीपक के थाप कालंका कुंतले और रामा कमल कुसुम चंपक के नामा गौराओ कनरा कल्याण अष्ट पुत्र दीपक के जाना सब मिल श्री राग वह गाव है पांचौ संग बरंगन लाव है बैरारी करनाटी तरी गवरी गाव है आसावरी ते पछ है सिंध वी अलापी श्री राग सिव पांचौ थापी सालू सारग सागराय और गोंड गंभीर अष्ट पुत्र श्री राग के गुंड कुंभ हमीर खष्ट मेघ राग वै गाव है पांचौ संग बरंगन लाव है सोठ गोंड मलारी तुनी पुन गाव है आसा गुनगुनी ऊचे सुर सुहाओ पुन कीनी मेघ राग सिव पांचौ चीनी बैरा तर गज थर के दारा जबली तर नाड़ी।

सारण अंगीकार करे तेरा कार्य सब सवारण सबना गल्ला सम्राट स्वामी सो क्यों मन हो बिसारे कह नानक मन मेरे सदा रहो हर नाले साचे साहिबा क्या नाही कर तेरे करता तेरे सब किश है जिस देह सो पावे सदा सिफत सलाह तेरी नाम मन वसावे नाम जिन कै मन वसे आवाजे सब कनेरे कह नानक सचे साहिब क्या नाही कर तेरे साचा नाम मेरा आधारो साच नाम आधार मेरा जिन भुखा सब गवाइया कर शांत सुख मन आए वसिया जिन इच्छा सब पुजाइया सदा कुर्बान कीता गुरु विट हो जिस दिया ए वड्याइया कह नानक सुनो संत हो शब्द धरो प्यारो साचा नाम मेरा आधारो वाजे पंच शब्द तित कर सुभागै कर सुभागै शब्द वाजे कला जित कर धारिया पंच दूत तुद वस कीते काल कंट कमारिया का

दंडौत बंदन अनेक बार सर्व कला समर्थ दोलन ते रखो प्रभु नानक दे कर हथ

जिस डिठ सब दुख जाए, जिस डिठ सब दुख जाए, जिस डिठ सब दुख सारे जिस डिठ सब दुख जाए, जिस डिठ सब दुख जाए, जिस डिठ

ज्ञान मृयंत पूजेते पूजा भगवंत सगल समग्री तुम रह सूतरतारी तम ते हो वे सो आज्ञाकारी मित तुम ही जानी नानक दास वाणी अरदास एक ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतेह। श्री भगवती जी सहाय वाह श्री भगवती जी की पाशाही दसवीं प्रथम भगवती सिमर गया गुरु नानक दैत्य आए फिरंगत गुर ते अमरदास रामदास है होए सहाय। अर्जुन हर गोबिंद नो सिमरो श्री हर राय श्री हर कृष्ण ते आईया जिस दिठै सब दुख जाए तेग बहादुर सिमरिय कर नानक दे आवै ताए सब थाई होए सहाय। दसवें पातशाह श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी सब थाई होए सहाय। दसां पातशाहां दी जोत श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे पाठ दे दार दा ध्यान करके बोलो जी। पंजा प्यारिया चौहान साहिबजादियां चालियां बक्तियां हठियां जपियां तपियां जिना नाम जपिया वंड छकिया देख जलाई तेग वाही देख अंडर कीता तेरा प्यारिया सच्यारिया दी कमाई दा ध्यान करके खालसा जी बोलो जी। जिना सिंघा सिंघनिया ने तरम हेत सीस तथे बंद बंद कटाए खोपड़ियां दुहाइया चरखिया दे चरे आरिया नाल चलाए गए गुरुद्वारा दी सेवा लई कुर्बानियां कीतियां तरम नहीं हारिया सिक्खी केसा सुहासा नाल निभाई तेरा दी कमाई दा ध्यान करके खालसा जी बोलो जी। पंजा तख्तां सरबत गुरुद्वारिया दा ध्यान करके बोलो जी। पिछवें सरबत खालसा जी की अरदास है जी सरबत खालसा जी को वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु जिते आवै जिते आवन का सदका सर्ब सुख होए जहां जहां खालसा जी साहेब तहां तहां रचिया रियायत देख देख फतेह बिरत की पैज पंत की जीत श्री साहिब जी सहाय खालसा जी के बोल वाले बोलो जी। सिखा नु सिखी दान केस दान रहै दान विवेक दान विसादान भरोसा दान दाना सरदान नाम दान श्री अमृतसर जी श्री अमृतसर जी दे दर्शन स्नान चौंकिया चंडे बंगे जुग जुग अटल धर्म काजाकार बोलो जी। सिखां दा मानी वाह मातो जी मां पाता राखा आप वाहिगुरु हे काल पुरख अपने पाते सदा सहिदा तार जियो श्री ननकाना साहिब ते होर गुरद्वारा गुरधामा दे चरणू पंथ नूं विछोड़िया गया है खले दर्शन दीदार सेवा संभालदा नान खालसा जी नूं बख्शियो हे रवानिया दे मान ने तानिया दीदान दियोतियां दी ओत सच्चे पिता वाहिगुरु आप दे हर जुए शब्द कीर्तन दी अरदास है जी। अकरवाडा काटा पोचक माफ करनी सरबते का जरास करनी सही प्यारे मेल जरा मिलिया तेरा नाम चितावे नानक नाम चढ़दी कला तेरे पाने सरबता पला वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। दोहरा आ गया पई काल की तबे चलायो पंथ सबसे सुन को हुक्म है गुरु मान्यो ग्रंथ गुरु ग्रंथ जी मान्यो प्रगट गरा की दे जो कल को मिल बोझ है खोज शब्द में ले आज करेगा

लागे बचे शरण जो होए। बोले सोने हाल वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी।

बोलो जी वाहेगुरु। एक ओंकार श्री वाहेगुरु जी की फतेह। श्री भगवती जी सहाय। वाह

कथना कथि नयावै तोड़, कथ कथ कथि कोटि गुणकोट। देन दा दे लैंदे तुरबाहे, जुगा जगंदर काहे खाहे। हुक्मी हूं जलाए राहु नानू, विसै वे प्रभाव। साचा साहिब साच नाहीं, पख्या पहु अपार। आख

अमित विसुर है परमेश्वर है कृता कृत है अमृता मृत है अजबा कृत है अमृता मृत है नरदायक है कलकाय।

समस्तं निवासे निर्कामं विमुक्ते समस्तं स्वरूपे कुकर्मं वरणासी सुधर्मं विमुक्ते सदा सचिदानंद सत्रं वरणासी करीमुल्कुनिंदा समस्तं निवासी अजाए बा बबूते गजाए बा कनीमे हरियं करियं करीमल रहीमे चतर चक्रवर्ती चतर चक्र पुगते सुअंब सुबंग सर्वदा सर्वजुगते

सगरी सेठ लिखाए अचंभव वाजुका स्वरूप स्वंभव अब रक्षा मेरी तुम करो सेखी अंबार आसक संगारो दुष्ट जिते उठपत उत्पाता सगन मरेश करो रणकाता जे आ तो तब शरणी पारे तनका दुष्ट दुखता वे मरे पुरख जमन बापरे देहारे तनके तुम संकट सवटारे जुका

प्रीतम सुख पाए राम, मिल प्रीतम सुख पाए राम, सच समाए सच वरते सब थाई, सच शिकार करे दिन राती, कामन सच समाई, हर सुख दाता शब्द पछाता, कामन लिया कंठ लाए, नानक महली महल पछाणे, गुरमति हर पाए, सा तन वाली तुर मेली, मेरे प्रभ आप मिलाई राम, गुरमति कट चानन होया, प्रभ रहिया सब थाई राम, प्रभ रहिया सब थाई, मन वसाई पूर्व लिखिया पाया, सेज सुखाली मेरे प्रभ पाणी, सच सिगार बिनाया, कामन निर्मल हमें मल खोई, गुरमत सच समाई,

आन दिनो शब्द रवो अनहद शब्द बजाए राम अनहद शब्द बजाए हर जियो कर आए हर गुण गावो नारी अन दिन भगत करो गुर आगे सा तन कंत प्यारी गुर का शब्द बसिया कट अंतर से जन शब्द सुहाए नानक तिन कर सद ही सोहिला

निर्मल होया, हर गुण गाए राम, निर्मल गुण गाए नाम, मन वसाए हर की अमृत वाणी, जिन मन वसिया सेई जन निस्तरे, कट कट शब्द समाणी, तेरे गुण गावे सहज समावे, सब दे मेल मिलाए, नानक सफल जन्म तिन के राजे, सतगुर हर मार्ग पाए, सत संगत सियो मेल पया, हर हर नाम समाए, राम गुर के शब्द सद जीवन मुक्त पए, हर के नाम लिव लाए, राम हर नाम चित लाए, गुर मेल मलाए, मनुआ रता हर नाले, सुख दाता पाया मोह चुकाया, आन दिन नाम समाले, गुर सबदे राता सहजे माता, नाम मन वसाए, नानक तिन घर सद ही सोहिला, जे सतगुर सेब समाए, बिन सतगुर जग भरम भुलाया, हर का महल न पाया, राम गुरमुखे इक मेल मलाया, तिन के दुख गवाया, राम तिन के दुख गवाया, जा हर मन पाया, सदा गावे रंग राते, हर के भगत सदा जन निर्मल, जुग जुग सद ही जाते, साची भगत करे दर जापे, घर दर सच्चा सोई, नानक सच्चा सुहला सच्ची, सच वाणी सब दे ही सुख होई, सूही महला तीजा,

के सहज सुभाए सा तन कंत प्यारी, सच संजम सदा है निर्मल गुर के शब्द सिगारी। मेरा प्रभ सच्चा सद ही सच्चा जिन आपे आप उपाया, नानक सदा पिर रावे अपना जिन गुर चरणी चित लाया। पिर पायड़ा वालड़िए अन दिन सहजे माती राम, गुरमती मन

हर मन तनो गुरमुख पीजे राम नाम प्यारे राम राम नाम प्यारे सब कोले उधारे राम नाम मुख बाणी आवन जान रहे सुख पाया कर अनहद सुरत समाणी हर हर एको पाया हर प्रभ नानक कृपा तारे सोहे लड़ा।

गुर गाई परम गत पाई पंच मिले सोहाया गया क्रोध ममता तन नाठी पाखंड परम गवाया होमे पीर गई सुख पाया आरोगत पय शरीरा गुर प्रसादी ब्रह्म पछाता नानक गुणी गहीरा मन मुख बिछड़ी दूर।

पाया, हर गुण गाया, हर वेखे राम हदूरे, हर आत्म राम पसारिया, स्वामी सर्व रहा पर पूरे, अंतर बाहर हर प्रभ एको, मिल हर जन मंगल गाए, जन नानक दूजी लाभ चलाई, अनहद शब्द बजाए, हर तीजड़ी लाभ मन चाओ, पया बैरागिया बलराम जियो, संत जना हर मेल हर पाया, बडपागिया बलराम जियो, निर्मल हर पाया, हर गुण गाया, मुख बोली हर बाणी, संत जना बडपागी पाया, हर कथिए अकथ कहानी, हिरदे हर हर हर धन उपजी, हर जपिए मस्तक भाग जियो, जन नानक बोले तीजी लावे, हर उपजे मन वैराग जियो, हर चौथड़ी लाभ मन सहज पया, हर पाया बलराम जियो, गुरमुख मिलिया सुभाए, हर मन तन मीठा लाया बलराम जियो, हर मीठा लाया मेरे प्रभ पाया, आन दिन हर लिव लाई, मन चिंदिया फल पाया, स्वामी हर नाम बजी बधाई, हर प्रभ ठाकर काज रचाया, तन हिरदे नाम वेगासी, जन नानक बोले चौथी लावे, हर पाया प्रभ अवनासी, एक ओंकार सतगुर प्रसाद।

प्रभ पाई मिलिया सहज सुभाई अन दिन भोग भोगे सुख सोवे सबद रहे लिव लाए बड़े भाग गुरपुरा पाइए अन दिन नाम ते आए सहजे सहज मिलिया जग जीवन नानक सुन समाए संगत संत मिलाए हर सर निर्मल नाए निर्मल जल नाए मैल गवाए पवे पवित शरीरा दुर्मत मैल गई परम भागा होमे विंठी पीरा नदर प्रभु सतसंगत पाई निज कर होया वासा हर मंगल रस रस।

परगासा, अंतर रतन विचारे, गुरमुख नाम प्यारे, हर नाम प्यारे, शब्द निस्तारे, अज्ञान अधेर गवाया, ज्ञान प्रचंड वलिया, कट चानन कर मंदर सोहाया, तन मन अर्प सिगार बनाए, हर प्रभ सच्चे पाया, जो प्रभ कहे सोई पर कीजे, नानक अंक समाया, हर प्रभ काज रचाया, गुरमुख व्यावण आया, ब्यावण आया, गुरमुख हर पाया, सा तन कंत प्यारी, संत जना मिल मंगल गाए, हर जियो आप सवारी, सर नर गण गद रंभ मिल आए, अपूर्व जंज बनाई, नानक प्रभ पाया मैं साचा, ना कदे मरे ना जाई, राग सूही शंत महला चौथा, कर तीजा एक ओंकार सतगुर प्रसाद, आवो संत जनो गुण गावे, गोविंद केरे राम, गुरमुख मिले रहिए कर वाजे, शब्द कनेरे राम, शब्द कनेरे है प्रभ तेरे, तू करता सब थाई, अहनस जपी सदा सलाही, साच शब्द ले बलाई, अन दिन सहज रहे रंग राता, राम नाम रिद पूजा, नानक गुरमुख एक पछाणे, अवर न जाने दूजा, सब मेरा वरिहा सो प्रभ अंतर जामी राम, गुर शब्द रवे रवरिहा सो प्रभ मेरा स्वामी राम, प्रभ मेरा स्वामी अंतर जामी, कट कट रविया सोई, गुरमत सच पाइये सहज समाइये, तिस विन अवर ना कोई, सहजे गुण गावा जे प्रभ पावा, आपे लय मिलाए, नानक सो प्रभ सब दे जापे, अहनस नाम ते आए, एहो जुगो दुत्तर मन मुख पार न पाई राम, अंतरे होमे ममता काम क्रोध चुतराई राम, अंतर चुतराई थाए न पाई, विरथा जन्म गवाया, जम मग दुख पावे चोटा खावे, अंत गया पछोताया, बिन नावे को वेली नाही, पुत कटंब सुत पाई, नानक माया मोह पसारा, अगे साथ ना जाई, हो पूछो अपना सतगुर दाता, किन विद दुत्तर तरिये राम, सतगुर पाए चलो जीवतिया, इब मरिए राम, जीवतिया मरिए, पवजल तरिये, गुरमुख नाम समावे, पूरा पुरख पाया बड़ भागी, साच नाम ले बलावे, मत परगास पई मन मानिया, राम नाम बढ़ियाई, नानक प्रभ पाया शब्द मिलाया, ज्योति ज्योत मिलाई, सूही महला चौथा, घर पंजवा एक ओंकार सतगुर प्रसाद, गुर संत जनो प्या

रविदास सरन प्रभ तेरी जो जानो त्यो करगत मेरी सुही। जो दिन आवै सो दिन जाही करना कूच रहन तिरनाई। संग चलत है हम्पी चलना दूर गबन सिर ऊपर मरना। क्या तू सोया जाग एना तैं जीवन जग सच कर जाना रहाऊ। जिन जियो दिया सो रिच अंबरावै सब घट भीतर हट चलावै। कर बंदगी चाड़ मैं मेरा हृदय नाम सुमार सवेरा। जन्म सरानो पंथ ना सवारा सांझ परी दह दिस अंधियारा। कहे रविदास निदान देवाने चेतस नाही दुनिया फनखाने सुई। उचे मंदर साल रसोई एक करी फुन रहन ना होई। ए हे ओ तन ऐसा जैसे घास की टाटी। जल गयो घास रल गयो माटी रहाओ। भाई बंद कुटंब सेहरा ओए पी लागे काढ़ सवेरा। कर की नार और है तन लागी ओ तो भूत भूत कर पागी। कह रविदास सबै जग लूटिया हम तो एक राम कह छूटिया। एक ओ अंकार सतगुर प्रसाद राग सूही बाणी सेख प्रीत जी की। तप तप लोहे लोहे हाथ मरोरो बाबल होई सो सोह लोरो। तैं सह मन मह किया रोस मुझ अवगन सह नाही दोस। तैं साहिब की मैं सार न जानी जोबन खोए का पाछे पुछतानी रहाओ। काली कोल तू कित गुण काली अपने प्रीतम के हो बिरह जाली। बिरह बिहुन कते सुख पाए जा होए कृपालता प्रभु मिलाए। बिदन कूही मुंद अकेली ना को साथी ना को बेली। कर कृपा प्रभ साध संग मेली जा फिर देखा ता मेरा अलोहो बेली। वाट हमारी खरी उडीणी कन्यो तिकी बहुत पेणी। उस ऊपर है मार्ग मेरा सेख परीता सेख फरीदा पंथ सुमार सवेरा। सूही ललत बेड़ा बंधन सक्यो बंधन की वेला। भर सरबर जब उछलै तब तरण दुहेला। हथ न लाए कुसंबड़ै जस जासी टोला। रहाओ एक अपिनय पतली सह केरे बोला। दुद्धा तनी ना आवई पर होए न मेला। कहे फरीद सहेलियो सहो अलाय सी हंस चल सी डुमना अह तन ढेरी थी सी। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भौ निर्वैर अकाल मूरत। अजूनी सहपंग गुर प्रसाद राग बिलावल महला पहला। चौप दे कर पहला तू सुल्तान कहा हो मिया तेरी कवन बढ़ाई। जो तू दे सो कहा स्वामी मैं मूर्ख कहन न जाई। तेरे गुण गावा देह बुझाई जैसे सच मैं रहो रजाई रहाओ। जो किच हुआ सब किच तुझते तेरी सब असनाई। तेरा अंत न जाना मेरे साहिब मैं दले क्या चुतराई। क्या हो कथी कते कत देखा मैं अकत नकत न जाई। जो तुद भावै सोई आखा तिल तेरी वड्याई। एते कुकर हो बेगाना पोका स्तंताई। भगत हीन नानक जे होएगा ता खसमै नौ न जाई। बिलावल महला पहला मन मंदर तन वेस कलंदर। घटी तीर्थ न आवा एक शब्द मेरा प्राण बसत है बहुड़ जन्म न आवा। मन विद्या दयाल सेती मेरी माई कौन जाने पीर पराई। हम नाही चिंत पराई रहाओ। अगम गोचर अलख अपारा चिंता करो हमारी। जल थल मही अल भरपुर लीना घट घट जोत तुम्हारी। सिख मत सब बुद्ध तुम्हारी मंदर चावा तेरे। तुझ बिन अवर न जाना मेरे साहिबा। गुण गावा नित तेरे जी जंत सब सरण तुम्हारी। सर्ब चिंत तुद पासे जो तुद भावै सोई चंगा एक नानक की अरदासे। महला बिलावल महला पहला आपे सबदा पे निशान आपे सुरता पे जान आपे कर कर वे कैतान। तू दाता नाम परवान ऐसा नाम निरंजन देव हो जाचक तू अलख अप्यो रहाओ। माया मोह तरकटी नार पूंडी कामण कामण यार। राज रूप झूठा दिन चार ना मिले चानण अंधियार। चक छोटी सहसा ने कोय बाप दिसै वे जात न होए। एके को नाही पौ कोय करता करे करावै सोए। शब्द मोए मन मन ते मारिया ठाकर हे मन सचै धारिया। अवर न सूझै गुर कौ वारिया नानक नाम रत्ते निस्तारिया। बिलावल महला पहला गुर वचनी मन सहज ध्याने। हर कै रंग रत्ता मन माने मन मुख भरम भुले बौराने। हर बिन क्यों रही है गुर शब्द पछाने। बिन दर्शन कैसे जीवो मेरी माई हर बिन जीरा रह ना सकै। खिन सतगुर बूझ बुझाई हरे बिन जियरा रह ना सकै। खिन सतगुर बूझ बजाई रहो मेरा प्रभ विसरै हो। मरो दुखाली सास ग्रास जपो अपने हर पाली। सद बैरागन हर नाम निहाली
अब जाने गुरमुख हर नाली अकत।

कथा कहिया गुर पाए प्रभ अगम गोचर दे दिखाए बिन गुर करणी क्या कार कमाए हो मैं मेट चलै गुर शब्द समाए मनमुख विचड़ै कोटी रास गुरमुख नाम मिलै साबास हर कृपा धारी दा संदास जा नानक हर नाम धन रास बिलावल महला तीजा कर पहला इको ओंकार सतगुर प्रसाद त्रिग त्रिग खाया त्रिग त्रिग सोया त्रिग त्रिग कापड़ अंग चढ़ाया त्रिग शरीर को टंब सहित स्यो जित हुण कसम न पाया पौड़ी छुड़की फिर हाथ ना आवे अहला जन्म गवाया दूजा भाव ना देई लिव लागण हा जिन हर के चरण विसारे जग जीवन दाता जन सेवक तेरे तिन के तै दुख नवारे रहाओ तू दयाल दया पत दाता क्या एह जंत बेचारे मुक्त बंध सुब तुजते होए ऐसा अख बखाणे गुरमुख होवै सो मुक्त कही है मनमुख बंध बेचारे सो जन मुक्त जिस एक लिव लागी सदा रह हर नाले तिनकी गहन गत कही ना जाई सच्चा अपसवारे परम पुलाने से मन मुख कही है ना उरवार न पारे जिसनो नदर करे सोई जन पाए गुर का शब्द संभाले हर जन माया माहे निस्तारे नानक भाग होवै जिस मस्तक कालै मार बिदारे बिलावल महला तीजा अतुल क्यों तुलिया जाए दूजा होए ता सोजी पाए तिस ते दूजा ना ही कोए तिस दी कीमत की कू होए गुर प्रसाद वसै माने आए ताको जाने दुबदा जाए रहाओ आप सराप कसवटी लाए आपे परके आप चलाए आपे तोले पूरा होए आपे जाने एक खुश होए माया का रूप सब तिस्ते होए जिसनु मिले सो निर्मल होए जिसनु लाए लगै तिसाए सब सच दिखाले ता सच समाए आपे लिवता तै आपे आप बुझाए आपे जापे आपे सतगुर शब्द है आपे नानक आख सुनाए आपे बिलावल महला तीजा साहिब ते सेवक सेव साहिब ते क्या को कहे बहाना ऐसा एक तेरा केल बनिया है सब मैं एक समाना सतगुर परचय हर नाम समाना जिस कर्म होवै सो सतगुर पाए अंदन लागै साहित्य आना रहाओ क्या कोई तेरी सेवा करे क्या को करे अब माना जब अपनी जोत किंचे तू स्वामी तब कोई करो दिखा बकियाना आपे गुर चेला है आपे आपे गुणी नदाना ज्यो आप चलाए तवै कोई चालै ज्यो हर पावै भगवाना कहत नानक तू साचा साहिब कौन जाना तेरे कामा एक ना कर मह दे वड़ियाई एक भरम पवै अब माना बिलावल महला तीजा पूरा तट बनाया पूरा वेखो एक समाना इस पर पंच मह साचे नाम की बड़े आई मत को धरो गुमाना सतगुर की जिसनु मत आवै सो सतगुर मह समाना ए बाणी जो जियो जाना तिस अंतर रवै हर नामा रहाओ चौह जुगा का हुण नबेड़ा नर मनुखा नु एक नदाना जत संजम तीर्थ उना जुगा का धर्म है कल मह कीर्त हर नामा जुग जुग आपो अपना धर्म है दे सोध देखो बेद पुराना गुरमुख जिनी ते आया हर हर जग ते पूरे परवाना कहत नानक सच्चे सो प्रीत लाए चूकै मन अभमाना कहत सुनत सबे सुख पाव है मानत पाहे नदाना बिलावल महला तीजा गुरमुख प्रीत जिसनु आपे लाए तित कर बिलावल गुर शब्द सुहाए मंगल गारी ना मंगल नारी गावै आए मिल प्रीतम सदा सुख पाए हो तिन बलिहारै जिन हर मन वसाए हर जन कौ मिलिया सुख पाईऐ हर गुण गावै सहज सुभाए रहाओ सदा संग राते तेरै चाए हर जियो आप वसै मन आए आपे सोभा सद ही पाए गुरमुख मेलै मेल मलाए गुरमुख राते शब्द रंगाए निज घर वसा हर गुण गाए रंग चलूलै हर रस पाए एहो रंग कदे ना उतरै साच समाए अंतर शब्द मिटिया अग्ञान अंधेरा सतगुर ज्ञान मिलिया प्रीतम मेरा जो सच राते तिन बहुड़ न फेरा नानक नाम दिरड़ाए पूरा गुर मेरा बिलावल महला भतीजा पूरे गुर ते वड्याई पाई अचिंत नाम वसिया मन आई होमै माया शब्द जलाई दर सच है गुर ते सोभा पाई जगदीश सेवो मैं अवरना काजा अंदन अनद होवै मन मेरा गुरमुख मांगो तेरा नाम नवाजा रहाओ मन की प्रतीत मन ते पाई पूरे गुरते शब्द बजाई जीवन मरण को समसर वेखै बहुड़ न मरै ना जम पेखै कर ही मैं सब कोट निदान सतगुर दिखाए गया अभमान सद ही लागा सह ध्यान अंदन गावै इको नाम इस युग मह वड्याई पाई
पूरे गुर ते नाम ते आई, जय देखा तै रहया समाई, सदा सुख दाता कीमत नहीं पाई, पूरे भाग गुर पूरा पाया, अंतर नाम निधान दिखाया, गुर का शब्द अति मीठा लाया, नानक त्रिसन बुझी मन तन सुख पाया। राग बिलावल महला चौथा घर तीजा इको ओंकार, सतगुर प्रसाद उद्दम मत प्रभ अंतर जामी, ज्यों प्रेरे त्यों करना, ज्यों नटुआ तंत बजाए तांती, त्यों वाजै जंत जना, जप मन राम नाम रसना, मस्तक लिखत लिखे गुर पाया, हर हृदय हर बसना रहाओ, माया ग्रस्त भ्रमत है प्राणी रख ले वो जन अपना, ज्यों प्रहलाद हणाक्ष ग्रस्यो हर राख्यो हर सरना, कवन कवन की गत मित कही है, हर किए पतत पवना, ओहो ढोवै ढोर हाथ चम चमरे, हर उदरयो परयो सरना, प्रभ दीन दयाल भगत भव तारन, हम पापी राख पपना, हर दासन दास दास हम करियो, जन नानक दास दासना, बिलावल महला चौथा, हम मूर्ख मुग्ध अज्ञान मती, शरणागत पुरख अजनमा, कर कृपा रख लेव हो मेरे ठाकुर, हम पाथरहीन अकर्मा, मेरे मान भज राम नाम रामा, गुरमत हर रस पाईऐ हुर त्यागो निफल काम रहाओ, हर जन सेवक से हर तारे हमरे गुण राख उपमा, तुझ बिन अवर ना कोई मेरे ठाकर, हर जपियै बड़े करमा, नामहीन त्रिग जीवते तिन वड दुख सहमा, ओए फिर जोन पवाईऐ मंद भागी मूढ़ अकर्मा, हर जन नाम आधार है तुर पूर्व लिखे वड करमा, गुर सतगुर नाम दरड़ाया जन नानक सफल जनमा, बिलावल महला चौथा, हमरा चित्त लुभत मोह बिकिया बहु दुरमत मैल परा, तुमरी सेवा कर ना सकै प्रभ हम क्यों कर मुग्ध तरा, मेरे मान जप नर हर नाम नर हरा, जन ऊपर कृपा प्रभ तारी, मिल सतगुर पार परा रहाओ, हमरे पिता ठाकुर प्रभ स्वामी हर देहो मती जस करा, तुमरे संग लगे से उदरे जो संग काष्ट लोह तरा, साकत नर होची मत मध्यम जिन हर हर सेव ना करा, ते नर भागहीन दोहचारी ओए जन्म मोए फिर मरा, जिन को तुम हर मेल हो स्वामी ते नाए संतोख गुरसरा, गुरमत मैल गई हर भजया जन नानक पार परा, बिलावल महला चौथा, आवो संत मिलो मेरे पाई, मिल हर हर कथा करो, हर हर नाम बहुत है कल युग खेवट गुर शब्द तरहो, मेरे मान हर गुण हर उच्च रहो, मस्तक लिखत लिखे गुण गाए, मिल संगत पार पर हो रहाओ, काया नगर मह राम रस उत्तम क्यों पाईऐ उपदेश जान करो, सतगुर सेव सफल हर दर्शन, मिल अमृत हर रस पियो, हर हर नाम अमृत हर मीठा, हर संतो चाख देखो, गुरमत हर रस मीठा लागा, तिन बिसरे सब बेख रसो, राम नाम रस राम रसायण, हर सेवो संत जनो, चार पदार्थ चारे पाए, गुरमत नानक हर भजहो, बिलावल महला चौथा, खत्री ब्राह्मण सूद वैस को, जपै हर मंत्र जपै नी, गुर सतगुर पार ब्रह्म कर पूजो, नित सेवो दिन सब रैनी, हर जन देखो सतगुर नैनी, जो इच्छो सोई पल पावो, हर बोलो गुरमत बैनी रहाओ, अनक उपाव चित व्यह बहु तेरे, सा होवै जे बात होवै नी, अपना पला सब कोई बछ है, सो करे जे मेरा चित ना चितैनी, मन की मत त्यागो हर जन, एहा बात कठैनी, अंदन हर हर नाम ते आवो, गुर सतगुर की मत लैनी, मत समत तेरा बस स्वामी, हम जंत तू पुरख जनतैनी, जन नानक के प्रभ करते स्वामी, ज्यो पावै ते वह बुलैनी, बिलावल महला चौथा, अनद मूल त्यायो पुरखोत्तम, अंदन अनद अनंदे, धर्मराय की कान चुकाई, सब चुके जमके छंदे, जप मन हर हर नाम गोबिंदे, बड़पागी गुरदर्श सतगुर पाया, गुण गाए परमानंदे रहाओ, साकत मूढ़ माया के बद्धक, बिच माया फिरे फिरंदे, त्रिसना जलत किरत के बाधे, ज्यो तेली बलद पवंदे, गुरमुख सेव लगे से उदरे, बड़भागी सेव करंदे, जिन हर जपया तिन फल पाया, सब टूटे माया फंदे,
आपे ठाकुर आपे सेवक सब आपे आप गोविंदे जन नानक आपे आप सब वरतै ज्यो राखै तवै रहंदे। एक ओंकार सतगुर प्रसाद राग बिलावल महला चौथा पड़ताल घर तेरवा। बोलो भैया राम नाम पतत पावनो हर संत भगत तारनो हर भर पुरे रहया जल थले राम नाम नित गाय हर दुख बेसारनो रहाओ। हर किया है सफल जन्म हमारा हर जपया हर दुख बिसार नहारा गुर भेटिया है मुक्त दाता हर की हमारी सफल जाता। मिल संगति गुण गावनो मन राम नाम कर आसा पाओ दूजा बिनस बिनासा बिच आसा होए निरासी सो जन मिलिया हर पासी कोई राम नाम गुण गावनो जन नानक तिस पग लावनो। राग बिलावल महला पंजवा चौप दे कर पहला। एक ओंकार सतगुर प्रसाद नदरी आवै तिस स्यो मोह क्यों मिलिए प्रभ अबनासी तोहे कर कृपा मोहे मार्ग पावो साध संगत कै अंचल लावो क्यों तरिए बिखिया संसार सतगुर बोहित पावै पार रहाओ। पवन चुलारे माया दे हर के भक्त सदा तिरसे हरख सोग ते रह निरारा सिर ऊपर आप गुरु रखवारा। पाया वेड़ माया सर्ब पयंगा हो मैं पचे दीपक देख पतंगा सगले सीगार करे नहीं पावै जो होए कृपाल तं गुरु मलावै। हो फिरो उदासी मैं एक रतन दसाया निर्मोलक हीरा मिले ना उपाया। हर का मंदिर तिसमें लाल गुर खोलिया पड़दा देख पई निहाल जिन चाख्या तिस आया साध ज्यों गूंगा मन मह बिस्माद आनंद रूप सब नदरी आया जन नानक हर गुण आख समाया। बिलावल महला पंजवा सर्ब कल्याण किए गुरदेव सेवक अपनी लायो सेव बिघन न लागै जप अलख अपेव धरत पुनीत भई गुण गाए दुरत गया हर नाम त्याय रहाओ। सबनी थाई रव्या आप आद जुगाद जाका बड़ प्रताप गुर प्रसाद ना होए संताप गुर के चरण लगे मन मीठे निर्विघन होए सब थाई बूठे सब सुख पाए सतगुर तूठे पार ब्रह्म प्रभ रखवाले जिथै किथै दिसै नाले नानक सा खा दास खसम प्रत पाले। बिलावल महला पंजवा सुख निदान प्रीतम प्रा मेरे

शरण तुहारिया। सिखाओ सदा हजूर, नानक शरण तुहारिया। सिखाओ सदा हजूर, सतनाम वाहिगुरु।

हर पहलड़ी ला परवर्ती कर्म दृढ़ाया बलराम जियो बाणी ब्रह्मा वेद धर्म दृढ़ो पाप जाया बलराम जियो हर पहलड़ी ला परवर्ती कर्म दृढ़ाया बलराम

सिमृत नाम दृढ़ाया सतगुर गुरपुरा रद हो सब किल विख पाप गवाया सहज आनंद हुआ वड भागी मन हर हर मीठा लाया जन का

संत जन हर मेल हर पाय वट भागिया बलराम जियो निर्मल हर पाया मुख बोली हर बाणी संत

गुरमुख मिलया हर मन तन मीठा लाया बलराम जीओ हर मीठा लाया मेरे प्रभु पाया अन दिन हर ले बुलाई

0: उस रात बदाई दाया केला सगो जगत चंगियाया बुरियाया बात धर्म हजूर कर्मिया तू अपने
1: ना

मरारी, जैसे तपते निर्मल कामा तैसे राम नाम, तैसे राम नामा बिन बापरो नामा।

हर हर नाकस हरे प्राण, ऐज मालकियो बखुंठ थान, सुआ पड़ाबत गणका तरी, सो हर नैनो की पुत्री, हर हर करत पूतना तरी, बाल कतनी कपटे परी, सिमरन द्रोपद सोति उदरी, गौतम सती सिला निस तरी, केसी कंस

निंदा कहाँ करो संसारा, निंदक का परगट पहाड़ा, निंदक सोद साध बिचारिया, कहो रविदास पापी नरक सदारिया, जोड़